0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नहीं अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंघम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने

0: में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi inaugurated CG Semi state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test plant in Sanand, Gujarat yesterday. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnav and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi said that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: The Prime Minister also said the Sanand plant is geared to produce 20 crore chips annually. He congratulated CG Semi on setting an ambitious future target of scaling production to 500 crore chips per year.
2: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: Earlier, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stone for development projects worth over 1,05,000 crore rupees in Rajasthan, marking a major push to infrastructure, energy, transport and employment generation in the state. During his day-long visit, the Prime Minister inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport. Thereafter, he dedicated the country's most modern greenfield refinery-cum-petrochemical complex to the nation in Pachpadra in Balotra district, which is an industrial processing plant built from scratch on undeveloped clean land. He also inspected the refinery's state-of-the-art control room, interacted with engineers and technical experts, flagged off fuel tankers and virtually laid the foundation stone for Jaipur Metro Phase 2. The monsoon session of Parliament will commence on 20th of this month. It will continue till 13th of August. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju informed that President Draupadi Murmu has approved the proposal of the government to convene the monsoon session of Parliament from 20th July. Mr. Rijiju said the session will focus on meaningful debate, discussion and decisions on issues of national importance. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. After his visit to Oman, Dr. Jay Shankar will visit New York on 13 July.

नमस्कार 100.1 एफएम गोल्ड खरासोना पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं, मैं देवजानी। 7:06 अब से लेकर सुबह के 8 बजे तक हमारा ये सफर जारी रहेगा। हर नई सुबह अपने साथ लाती है कुछ नई उम्मीदें, नए सपने और मीठे से पल। तो आइए इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं संगीत की मधुर छाओं के साथ। और इसके साथ ही साथ दिन भर की काम की बातें, जरूरी जानकारियां, मुस्कुराहटें। तो चलिए, सफर की शुरुआत हो चुकी है और एक के बाद एक खूबसूरत सी गीतों का हाथ थाम कर इस सफर को तय करते हैं।

एक प्यारे से खूबसूरत से गीत के इस पार चलिए अब जानते हैं आज के मौसम का हाल। कोलकाता और आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा। हल्की से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन समुद्र की ओर रुख करने वाले हमारे मछुआरे भाइयों के लिए एक जरूरी सूचना, 5 से 7 जुलाई के बीच पश्चिम बंगाल और उत्तर ओडिशा तट के समुद्री क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसलिए इस अवधि में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। फिलहाल मौसम से जुड़ी यही अहम जानकारी। सुरक्षित रहें, मौसम के अपडेट पर नजर बनाए रखें और सुनते रहिए FM गोल्ड, सुहानी सुबह।

कहते हैं इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, बल्कि आने वाले कल के लिए सीख भी देता है। आइए वक्त की सुइयों को थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास के पन्नों पर कौन सी अहम घटनाएं दर्ज हुई, किन महान हस्तियों का जन्म हुआ और किसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली छाप छोड़ी। में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी द्वारा आइजक न्यूटन की महान कृति प्रिंसिपिया प्रकाशित की गई, जिसमें उन्होंने गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। वेनेजुएला ने आज के ही दिन अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1951 में बेल लैब्स में जंक्शन ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली और जॉन बाडन और वॉल्टर हाउजर ब्रेटन ने किया, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1956 में मिला। 1975 में पुर्तगाली शासन के 500 वर्षों के बाद केप वर्डे द्वीप समूह को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। जी हाँ, वही केप वर्डे द्वीप समूह जिन्होंने इस बार रफीफा वर्ल्ड कप में धूम मचा दिया। 1983 में एक महिला ने मस्तिष्क मृत्यु के 84 दिन बाद बच्चे को जन्म दिया वर्जीनिया में। नैन्सी रीगन ने जीर्णोद्धार के बाद स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फिर से खोलने के लिए लाल सफेद और नीले रंग का रिबन काटा। 2012 में लंदन में यूरोप की सबसे ऊंची इमारत द शार्ट का उद्घाटन हुआ, जिसकी ऊंचाई 309.6 मीटर यानी कि 1016 फीट है। 2019 में प्राचीन इराकी शहर बेबीलोन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 2021 दुनिया की सबसे पुरानी कलाकृतियों में से एक 51,000 साल पुरानी हिरन की हड्डी, जिसे नियंडरथल द्वारा तराशा गया था, जर्मनी के हास पहाड़ों में खोजे जाने की घोषणा की गई आज के ही दिन। 2025 फ्रांस के पेरिस में सीन नदी पर 3 नए तैराकी स्थल जनता के लिए खोले गए, जो प्रदूषण और नौवहन संबंधी चिंताओं के कारण 1923 में प्रतिबंधित होने के बाद पहली बार हुआ।

1882 में आज के दिन जन्म हुआ था भारतीय गायक संगीतक दार्शनिक इनायत खान, सूफी संप्रदाय के संस्थापक जो थे। इनका जन्म ब्रिटिश भारत के वडोदरा में हुआ था। और आज अपना जन्मदिन मना रही हैं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। 2019 में महिला एकल विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पीवी सिंधु, जिनका जन्म आज के ही दिन 1995 में हुआ था। पीवी सिंधु के साथ साथ आप सभी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं अगर आप आज अपना जन्मदिन मना रहे हों।

संगीत केवल सुरों का मेल नहीं बल्कि आत्मा की भाषा भी है। ये सीमाओं, भाषाओं और धर्मों से परे जाकर इंसानों को जोड़ने की शक्ति रखता है। ऐसे ही एक महान सूफी संत, संगीतज्ञ और आध्यात्मिक गुरु थे हजरत इनायत खान, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और सूफी दर्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अद्भुत काम किया। हजरत इनायत खान का जन्म आज के ही दिन यानी 5 जुलाई को 1882 में बड़ौदा के एक प्रतिष्ठित संगीत परिवार में हुआ था। उनके दादा उस्ताद मौला बख्श भारतीय शास्त्रीय संगीत के विख्यात विद्वान थे। संगीत की शिक्षा उन्हें बचपन से ही मिली और कम उम्र में ही वे एक कुशल गायक और वादक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इनायत खान का उद्देश्य केवल संगीत प्रस्तुत करना नहीं था, उनका मानना था कि संगीत आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाने का सबसे सरल माध्यम है। यही सोच उन्हें सूफी मार्ग की ओर ले गई। उन्होंने प्रसिद्ध सूफी संत हजरत अबू हाशिम मदनी से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने भारत छोड़कर पश्चिमी देशों की यात्रा की। उस समय यूरोप और अमेरिका में भारतीय संगीत और सूफी विचारधारा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हजरत इनायत खान ने वहां न केवल भारतीय शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया बल्कि प्रेम, करुणा, सहिष्णुता और मानवता का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा था, प्रेम ही जीवन का सार है और सामंजस्य ही उसका सौंदर्य। उनका विश्वास था कि सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है, मानवता की सेवा और ईश्वर से प्रेम। हजरत इनायत खान ने पश्चिम में सूफी ऑर्डर की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने कभी किसी धर्म विशेष का प्रचार नहीं किया बल्कि इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म माना। उन्होंने कई किताबें भी लिखी जिनमें द मिस्टिसिज्म ऑफ साउंड एंड म्यूजिक, द म्यूजिक ऑफ लाइफ और द आर्ट ऑफ पर्सनालिटी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन किताबों में उन्होंने संगीत और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध को सरल भाषा में समझाया। हजरत इनायत खान के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। जब दुनिया विभाजन, तनाव और असहिष्णुता जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब हजरत इनायत खान का प्रेम, संवाद और सौहार्द का संदेश हमें एक नई दिशा देता है। 5 फरवरी 1927 को दिल्ली में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है। भारत से शुरू हुई उनकी आध्यात्मिक यात्रा आज भी अनेक देशों में जारी है। हजरत इनायत खान का जीवन हमें ये सिखाती है।

कि संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि आत्मा को जोड़ने और मानवता को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति भी है। उनका संदेश हमें प्रेम, शांति और आपसी सम्मान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।

चलिए अखबारों की ओर रुख करते हैं और देख लेते हैं कि अखबार हमारे आज के दिन के बारे में, हमारे आसपास के बारे में क्या कह रहे हैं। हेडलाइन है, विशेष राम मंदिर न्यास की बैठक का सोमवार को विशेष जांच दल के रिपोर्ट के साथ ही इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। इसके साथ ही बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला समिति करेगी जांच। और वैभव भारत के सबसे युवा क्रिकेट खिलाड़ी बने, सचिन को पीछे छोड़ा। बिहार के समस्तीपुर जिले के 15 वर्षीय प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने शनिवार को भारतीय क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिखते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले देश के सबसे युवा खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। उन्होंने लगभग 37 वर्षों से कायम महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने आंधी तूफान की संभावना भी जताई। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण भारी बारिश के लिए लाल चेतावनी जारी की।

बंगाल के साथ ही साथ ओडिशा में भारी बारिश का पूर्वानुमान, प्रशासन सतर्क। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए 5 जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। इसके बाद राज्य सरकार ने संबंधित सभी विभागों को संभावित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया।

भारतीय कलात्मक जिम्नास्टिक्स टीम जाएगी ग्लासगो। भारत की कलात्मक जिम्नास्टिक्स टीम आगामी राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों के तहत लंदन में 3 सप्ताह का प्रशिक्षण शिविर पूरा करने के बाद 20 जुलाई को ग्लासगो के लिए रवाना होगी। ग्रैंड शतरंज टूर रैपिड वर्ग में संयुक्त शीर्ष पर रहे प्रज्ञानानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने आखिरी दिन तीनों मुकाबले जीतकर ग्रैंड शतरंज टूर के क्रोएशिया चरण में रैपिड श्रेणी में 12 अंक लेकर फ्रांस के फिरोजा अली रजा के साथ संयुक्त शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है।

निर्धारित समय पर ही शुरू होगा। एक जानकार सूत्र ने बताया कि फीफा अंतिम 16 के इस मुकाबले को जल्दी शुरू कराने की संभावना तलाश रहा था। मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया। एक ही विश्व कप में 2 आत्मघाती गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने हानी। मिस्र के डिफेंडर मोहम्मद हानी एक ही टूर्नामेंट में 2 आत्मघाती गोल करने वाले विश्व कप के इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए। और प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील के सामने नॉर्वे की कड़ी चुनौती। नॉकआउट के मुकाबले के बाद अब प्री क्वार्टर फाइनल का जंग शुरू हो गया है। इस चरण में 16 टीमें आपस में भिड़ेंगी। ब्राजील का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से होगा। यूं कहा जाए तो ये मुकाबला विनीसियस जूनियर और एलिंग हॉलैंड के बीच होने वाला है। दोनों ही इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। विनीसियस जूनियर ने इस टूर्नामेंट में 4 गोल दागे हैं, वहां हॉलैंड के नाम 5 गोल है। विश्व कप में दोनों टीमों की एकमात्र भिड़ंत 1998 में हुई थी, जिसमें नॉर्वे ने ब्राजील को 2-1 से हराया था।

100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर सुन रहे थे कार्यक्रम सुहानी सुबह दीप जानी के साथ 7:56 और 5 सेकंड्स। बस इस आखिरी गीत के साथ ही साथ सुहानी सुबह से आज के लिए मैं लेती हूँ इजाजत। दोबारा वापस आऊंगी इसी चैनल पर लेकर कार्यक्रम लो आगे उनकी याद 11:10 पर, और उससे भी पहले 10:02 से आपसे रूबरू होंगी मैं FM रेनबो यानी कि 107 FM रेनबो पर। फिलहाल ये गीत सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि

0: में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, और कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी

0: गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
1: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 बजे से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं।

0: जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करते हुए ये कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को

0: एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को मजबूती करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ होगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ की मशहूर पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनका एम्स रायपुर में लंबे समय से इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह करीब 3:15 पर अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छत्तीसगढ़ की इस लोक कला शैली को दुनिया भर में पहचान दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति की दुनिया के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की इस वर्ष काफी जोश और उत्साह के साथ शुरू हुई है। यात्रा के पहले 2 दिनों में 32,313 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। इस बीच वार्षिक यात्रा के श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में 291 वाहनों में 6,731 श्रद्धालु शामिल हैं। इनमें से 4,131 श्रद्धालु 139 वाहनों में पारंपरिक पहलगाम मार्ग से जा रहे हैं, जबकि 2,590 श्रद्धालु 152 वाहनों में बालतल मार्ग की तरफ से जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Vikasit Udan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
0: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और

0: दूरदराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: Prime Minister also inaugurated the new terminal building at Jodhpur Airport, marking a major push to India's civil aviation infrastructure and regional connectivity. Government has increased the procurement price of onions for the

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की प्रशंसा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप, बिजली आपूर्ति प्रभावित। और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ

0: द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में जकार्ता में इंडिया क्लब के अध्यक्ष सिद्धार्थ टपाड़िया ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देश अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे।
1: पूरे इंडोनेशिया में न केवल जकार्ता में एक उत्साह की लहर दौड़ रही है। हमारे प्यारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं इंडोनेशिया, तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। 200 वॉलंटियर हमारे इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न कम्युनिटी से आ रहे हैं अपना कल्चर डाइवर्सिटी दिखाने के लिए। इसके अलावा जकार्ता से बाहर से बहुत सारे सैकड़ों लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेडान हो, बाली हो, सुराबाया हो या समारांग हो।
0: इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। बयान में कहा गया है कि दोनों नेता मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक नेता शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर चार खाड़ी देश और अमरीका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 10 जुलाई तक की इस यात्रा में डॉक्टर जयशंकर विभिन्न देशों के शीर्ष नेताओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। ओमान के बाद डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। इसके बाद वे 14 और 15 जुलाई को ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक में भाग लेंगे और यूरोपीय संघ तथा बेल्जियम के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अल खमेनेई के 6 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार कल से तेहरान में शुरू हो गए। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसाला में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उपस्थित लोगों में राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गलीबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। बिहार के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि है वे, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। 9 जुलाई को पवित्र शहर मशहद में दफनाए जाने से पहले अगले कुछ दिनों तक अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जारी रहेगा। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिग्स ने कहा है कि देश में भूकंप से मृतकों की संख्या 2954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हैं। लगभग 16,000 लोग बेघर हुए हैं। देश में एक सदी से भी अधिक समय में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप के बाद बचाव अभियान अब भी जारी है। इस बीच वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के शोक की घोषणा करते हुए कहा कि विनाशकारी भूकंप से हुई जान माल की हानि से पूरा देश सदमे में है। वेनेजुएला में 24 जून को 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिससे राजधानी कराकस में कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के झटके वेनेजुएला के एक बड़े हिस्से में महसूस किए गए। भारत

0: ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू का प्रकोप जारी है, इससे बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण फीफा फुटबॉल विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी की गई है। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने भीषण गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। अमरीकी मौसम विभाग ने कहा है कि बोस्टन में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस, फिलाडेल्फिया में 44 डिग्री और वॉशिंगटन में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फ्रांस में 1947 के बाद से जून अब तक सबसे गर्म महीना रहा। सरकारी मौसम एजेंसी के अनुसार जून में औसत तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रहा। भीषण लू से तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से 24 और 25 जून अब तक के सबसे गर्म दिन रहे। इससे पहली बार फ्रांस में राष्ट्रीय स्तर पर औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। माली की सेना ने कहा है कि विद्रोहियों ने उत्तरी इलाकों के गांव और सिवारे कस्बों को निशाना बनाया है। एक विद्रोही गुट के उत्तरी इलाके के एक कस्बे पर कब्जा करने के लिए नए हमले का ऐलान करने के बाद यह बयान आया है। आजाद लिबरेशन फ्रंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि अलगाववादी एनएफएस कस्बे को निशाना बना रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: सबसे पहले बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में पैराग्वे को कड़े मुकाबले में 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले टेक्सास में मोरक्को ने कनाडा पर 3-0 की शानदार जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्रिकेट की बात करें तो मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने T20 क्रिकेट में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट खोकर ही 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। और अब बात टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना राय बकीना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्वेटेक को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज सर्बिया के नोवाक जोकोविच का प्री क्वार्टर फाइनल के मैच में रूस के रोमन सफियोलिन से मुकाबला होगा। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त इटली के यानिक सिनर का सामना जापान के शिंतारो मुजुकचुकी से होगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 4 खाड़ी देशों और अमेरिका तथा बेल्जियम की यात्रा पर आज रवाना होंगे। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2954 हुई। पूर्वी अमेरिका में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, बिजली आपूर्ति प्रभावित और फ्रांस तथा मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू कर दिया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने

0: रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से देश के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क को और मजबूत करेगी। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों ही देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतिकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने शानदार प्रदर्शनों के जरिए तीजन बाई ने छत्तीसगढ़ की लोक कला शैली के लिए वैश्विक पहचान अर्जित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme, Viksit Udan, in Jodhpur, Rajasthan yesterday, to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udan scheme, smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.
3: Udan Yojana ke naye charan ki bhi shuruaat hui hai. Iske tahat chote-chote shaharon aur dur-daraz ke kshetron ko air connectivity se joda jayega. Saath hi अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल बिल्डिंग एट

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं। मैं दीप जानी। 11:18 और 5 सेकंड्स समय है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद का। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम सफर तय करते हैं हिंदी सिनेमा के उस दौर की, उस दौर में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस भी किए जाते थे, जब कहानियां पर्दे पर नहीं दिलों में उतर जाती थी और जब कुछ फिल्मी जोड़ियां अपनी अदाकारी से ऐसे छाप छोड़ जाते थे कि बरसों बाद भी उनकी याद आते ही अनगिनत गीत होंठों पर आ जाते हैं। आज की महफिल भी सजी है ऐसी ही एक सदाबहार जोड़ी के नाम। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों कलाकारों ने साथ में बहुत ज्यादा फिल्में नहीं की, लेकिन जितनी भी की उनमें अभिनय का ऐसा जादू बिखेरा और ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनकी ऐसे दिखी कि फिल्मी ये जो फिल्में हैं वो हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम अध्याय का हिस्सा बन गई। उनकी मौजूदगी भर से सारे सीन्स मानो जीवंत हो उठते थे और गीतों में भावनाओं की एक नई परत जुड़ जाती थी। तो आइए यादों की इस सुनहरी राह पर कदम बढ़ाते हैं। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। मैं हूं दीप जानी आप सभी सुनने वालों के साथ।

अमिताभ बच्चन और रेखा को हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम जोड़ा कहा जाता था। उनकी लोकप्रियता आज भी इतनी है कि अगर उन्हें कोई साथ में कास्ट करे तो वो फिल्म तुरंत हिट हो जाएगी। कुछ लोगों में स्वाभाविक रूप से अद्भुत केमिस्ट्री होती है और अमिताभ और रेखा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। स्क्रीन पर साथ में उनकी मौजूदगी ही बस आग लगा देती थी। कैमरे पर जिस तरह से एक दूसरे को वे देखते थे उसमें प्यार झलकता था। ये सिर्फ स्क्रीन का जादू था जिसने उन्हें जनता का चहेता बना दिया, लेकिन सिर्फ उनका करिश्मा ही उनकी जोड़ी को खास नहीं बनाता था। वे बेहतरीन अभिनेता भी थे और साथ में अभिनय करना उनके लिए बेहद आसान था। आप उनसे नजरें हटा ही नहीं सकते थे, वे एक दूसरे के लिए ही बने थे और आज के समय में उनकी बराबरी करना स्क्रीन पर बेहद मुश्किल काम है। सन 1976 में आई फिल्म दो अनजाने, इसका निर्देशन किया था दुलाल गुहो ने। संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। ये वही फिल्म थी जिसने आज की हमारे इस यादगार जोड़ी को एक अलग पहचान दी। एक और अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सहज अभिनय से तेजी से लोकप्रिय हो रहे अभिनेता और दूसरी ओर अपने आत्मविश्वास, नजाकत और बहुआयामी अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुकी अभिनेत्री। दोनों कलाकारों ने अपनी अलग अलग अभिनय शैली दिखाई, लेकिन पर्दे पर उनका बैलेंस इतना नेचुरल था कि दर्शकों ने इस जोड़ी को तुरंत अपना लिया। इस फिल्म की कहानी में रहस्य, रिश्तों और भावनाओं का उतार चढ़ाव देखने को मिला और इसी वजह से ये आज भी याद किए जाते हैं। फिल्म में अमिताभ और रेखा की केमिस्ट्री लाजवाब थी। फिल्म में युवा मिथुन चक्रवर्ती ने भी एक संक्षिप्त कैमियो भूमिका में काम किया। दो अनजाने की सफलता ने ये संकेत दे दिया था कि हिंदी सिनेमा को एक ऐसी नई ऑन स्क्रीन जोड़ी मिल गई है जो हर तरह के किरदार निभाने की क्षमता रखती है। इसके बाद दोनों कलाकार अलग अलग फिल्मों में भी लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को छूते रहे, लेकिन जब जब वे साथ आए दर्शकों की उत्सुकता कुछ और ही होती थी।

0: समझ सकती हूँ कि इस तरह के गीतों के साथ अमिताभ बच्चन और रेखा को एसोसिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर यकीन मानिए एनसी सिप्पी द्वारा बनाई गई ये फिल्म, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा के साथ साथ छाया देवी, असरानी, फरीदा जलाल वगैरह बेहतरीन कलाकारों ने अभिनय किया था। ये जो गीत हमने सुना आई ऋतु सावन की, इसमें आवाजें थी भूपिंदर सिंह और कुमारी फैयाज की, संगीत जयदेव का और गीत राही मासूम रजा द्वारा लिखा गया था ये गीत। इस फिल्म में कई और भी गीत थे, जैसे कोई गाता मैं सो जाता जिसे हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था, माता सरस्वती शारदा जिसे हमने अभी अभी सुना, लता मंगेशकर दिलराज कौर की आवाजें थी, और इस गीत का एक और वेरिएशन है, ये सुदास दिलराज कौर और मधुरानी की आवाजें हैं इस गीत में, और इसके साथ ही साथ येसुदास की आवाज में चांद अकेला, बहुत बहुत पॉपुलर ये सारे गीत जो थे। ऋषिकेश मुखर्जी और बिग बी की असफल साझेदारी में निराशा और हताशा झलकती थी कभी कभी। बिग बी ने एक होनहार वकील के बेटे के किरदार को बखूबी निभाया था, जो अपने पिता की कला सीखने के बजाय एक शास्त्रीय गायिका के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। सपने को पूरा करने के लिए आप कितनी हद तक जा सकते हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जिसका संगीत के प्रति जुनून और सब कुछ खोकर भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने की जो तलब है वो सर चढ़कर बोलती थी। संगीत इस फिल्म में लाजवाब तो है ही और अभिनय भी उतना ही शानदार। इसमें येसुदास द्वारा गाए गए चांद अकेला और कोई गाता मैं सो जाता जैसे अनमोल गीत है, जिसका संगीत मैंने जैसे कहा कि जयदेव ने दिया है। चलिए एक और गीत की ओर कदम बढ़ाते हैं और इस गीत के उस पार कुछ एक बातें करते हैं इस गीत के बारे में।
1: तो बांगड़ुओं शुरू हो जाओ और सुर लगाओ। अरे गधों सुर में रेको, सुर में हटको मत, हटको मत। जब दूल्हे राजा आएंगे तो लोगे तुम बलाए,
2: लोगे तुम बलाए।
1: अरे नालायकों हम नहीं तुम,
2: अरे नालायकों हम नहीं तुम।
1: तुम लेके बलाए फिर देंगे,
3: फिर देंगे।
1: अरे देंगे दुआए,
2: देंगे दुआए।
1: शाबाश, तो बनी रहे जोड़ी क्या।

0: अनुसार ढाला गया था। फिल्म में अमिताभ बच्चन को टाइगर और विनोद खन्ना को शेरा कहा गया था। उनके नामों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कैसी फिल्म है जिसमें वे बिना पसीना बहाए 20 लोगों की पिटाई करेंगे। अमिताभ और विनोद खन्ना दोनों ही सुनहरे दिल वाले सख्त किरदारों को निभाते हैं। रेखा फिल्म में अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका में है और उन्हें एक दृढ़ निश्चयी और आत्मनिर्भर महिला के रूप में दिखाया गया है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अब तक हमने कौन कौन से गीतों को किन किन फिल्मों से सुना। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में हमने सुना आई करके सिंगार, लता मंगेशकर की आवाज, दो अनजाने फिल्म से। उसके बाद माता सरस्वती शारदा, येसुदास मधुरानी दिलराज कौर की आवाजें फिल्म आलाप से। उसके बाद आई ऋतु सावन की, भूपिंदर सिंह और कुमारी फैयाज की आवाज, आलाप फिल्म से। बनी रहे जोड़ी किशोर कुमार और साथी कलाकारों की आवाजें फिल्म खून पसीना से। अब आइए आगे एक गीत सुन लेते हैं, फिल्म गंगा की सौगंध।
1: अरे मिस्री जैसी तोरी सुरतिया,

100.1 एफएम गोल्ड खरासोना पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। मैं हूं देवजानी, आप सभी सुनने वालों के साथ। मौसम के बारे में एक जरूरी सूचना, अभी मिली खबर के अनुसार अब से लेकर अगले 2-3 घंटों तक पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर, दक्षिणी मिदनापुर, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना,

उत्तरी 24 परगना के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना है और साथ ही साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सावधानी बरतें।

मुकद्दर का सिकंदर केवल एक सफल फिल्म नहीं थी बल्कि भावनाओं, संगीत और अभिनय का अद्भुत संगम थी। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच दिया था। अमिताभ बच्चन ने सिकंदर के किरदार में दर्द, संघर्ष और संवेदनशीलता का अनूठा मेल दिखाया, जबकि रेखा ने अपने प्रभावशाली अभिनय से कहानी को एक नई ऊंचाई दी थी। और अब रुख करते हैं 1979 की उस फिल्म की ओर जिसने अमिताभ बच्चन का शरारती अंदाज और रेखा की सहज मुस्कान ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

सिलसिला शायद यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित सबसे मैच्योर्ड और अहेड ऑफ इट्स टाइम फिल्म थी, जिसमें संबंधों जैसे वर्जित विषय को भी उस समय के दौरान उठाया। हालांकि वास्तविक जीवन में अमिताभ और रेखा का रिश्ता काफी उतार चढ़ाव भरा रहा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन आज भी इसे कल्ट क्लासिक माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि रेखा और जया फिल्म के लिए मूल पसंद नहीं थी। यश चोपड़ा ने परवीन बाबी और स्मिता पाटिल को कास्ट किया था, लेकिन आखिरी समय में उन्हें बदल दिया। शायद अगर मूल कास्टिंग बरकरार रहती तो फिल्म का भाग्य कुछ और होता। यह आखिरी फिल्म थी जिसमें अमिताभ और रेखा ने एक साथ उसमें अभिनय किया था। फिल्म इस मायने में मुक्तिदायक थी कि इसने दिखाया कि प्यार हम सभी को कैसे मूर्ख बना देता है, कि दिल के मामलों में हम सभी सीमाएं पार कर जाते हैं। किसी भी संगीतमय सफर का सबसे सुंदर पड़ाव उसकी विदाई होती है। विदाई इसलिए नहीं कि यादें समाप्त हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि वे कभी फिर लौट आने का वादा छोड़ जाते हैं। तो बस आज के इस एपिसोड अब लो आ गई उनकी याद से मुझे यानी देवजानी को दीजिए इजाजत। आज हम बातें कर रहे थे अमिताभ बच्चन और रेखा की ऑन स्क्रीन जोड़ी के बारे में और उनकी ही फिल्मों से कुछ गीतों को लेकर सजाया था इस कार्यक्रम को।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए यह एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में

0: राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act after disruptions to LNG shipments through the Strait of Hormuz. Government has increased the procurement price of onions for the price stabilization buffer by 13% from 1875 rupees per quintal to 2125 rupees per quintal. Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that the revised procurement price will ensure better returns for onion farmers while supporting buffer procurement efforts. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said that the VBG Ramji Act has successfully transitioned from Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी। महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material seen in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to CSEM. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. Earlier, the ministry had taken cognizance of reports that Instagram showcased certain objectionable material that promoted child sexual abuse and issued directions to officials to seek a response from Meta. Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. The emergency order was issued in March this year under the Essential Commodities Act. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today sanctioned and released assistance of 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan said, under this act, over 7.5 lakh crore rupees will be invested in 2.86 lakh panchayats in the next 5 years to accelerate the vision of Viksit Bharat. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on an official visit to Qatar, Bahrain, Kuwait and Oman from today till the 10th of this month. During the visit to these countries, Dr. Jaishankar will be meeting with his counterparts and the leadership. Ministry of External Affairs said the visit will focus on enhancing India's bilateral relations with the countries and also provide an opportunity

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही

0: विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
3: The significance is immense.
2: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह

0: से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स

में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जेनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरु मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तकनपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे में एक डॉक्टर सहित 49 तीर्थयात्री हैं, जिनमें 34 पुरुष और 15 महिलाएं हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। यह पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि परिषद जटिल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए डेटा आधारित स्केलेबल प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों में अग्रणी भूमिका निभाती रहेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती पर श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्धविराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि इस निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी पूरे देश में सिर्फ एक ही दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों से बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। श्री धामी ने तीर्थयात्रियों से स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की खरीद करके स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रमुख पहल राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान प्राथमिकता परियोजना ICMR माइंड्स ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। ये पुरस्कार केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूह में संस्थागत नियंत्रणता और सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अस्मरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात 1:30 बजे ब्राजील का मुकाबला नॉर्वे से होगा। वहीं से पहले फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 और मोरक्को ने कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

बिल्कुल दोस्तों, मौसम में थोड़ी बेईमानी तो की है। जी हाँ, अचानक रिमझिम गिरे बरसात ने गर्मी से थोड़ी राहत तो प्रदान की है। तो दोस्तों, शाम की इस प्यारे से समय में आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। जी हाँ, लेकर आई हूँ सदाबहार गीतों की महक और यादों की वो सौंधी खुशबू जो दिल को छू जाए, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त ज्योति, और लेकर आई हूँ कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों, कभी कभी मौसम भी इंसानी भावनाओं की तरह बदल जाता है। कभी धूप की मुस्कान भी घेरता है तो कभी बादलों की चादर ओढ़कर मन को कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसे ही एहसासों को शब्द और सुरों में पिरोया गया है इस खूबसूरत गीत में, जिसे अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लोफर से। तो दोस्तों, आगे हम साथ मिलकर सुनेंगे हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमे जो समय के साथ और भी खूबसूरत हो गए। तो दोस्तों, चाय की प्याली अपने पास रखिए और दिल के दरवाजे खोल दीजिए और तैयार हो जाइए संगीत की एक यादगार यात्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू तो हो ही चुकी है और इस एहसास के बाद अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर।

0: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति
1: तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को सामने भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण और सशक्तिकरण से जुड़ी योजना के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। साथियों, किसी भी देश की प्रगति तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आत्मनिर्भर बने, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को जब आगे बढ़ने का अवसर मिलते हैं, तब देश की आर्थिक नींव और मजबूत होती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल सन 2016 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एससी एसटी वर्ग और महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण की सुविधा दी जाती है। ग्रीन फील्ड परियोजना का अर्थ है एक ऐसा नया उद्यम जो पहली बार शुरू किया जा रहा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सेवाओं हो या फिर व्यापार से जुड़ा हो। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है। हर बैंक शाखा को कम से कम एक महिला उद्यमी और एक एससी या एसटी उद्यमी को ऋण देना अनिवार्य किया गया है। इस ऋण में परियोजना लागत का अधिकतम 75% तक वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि लाभ

धरती को स्वयं लगानी होती है, जिसे मार्जिन मनी कहा जाता है। ऋण की अदायगी की अवधि अधिकतम 7 वर्ष तक होती है और इसमें कार्यशील पूंजी की भी सुविधा मिलती है। स्टैंड अप इंडिया योजना की एक खास बात यह है कि इसमें केवल ऋण ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की सुविधा भी दी जाती है और इसके लिए सरकार ने स्टैंड अप इंडिया पोर्टल और टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था की है ताकि उद्यमी सही दिशा में आगे बढ़ सके। इस योजना से लाखों महिलाएं और युवा उद्यमी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं और समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, स्टैंड अप इंडिया योजना केवल एक योजना नहीं बल्कि यह एक आंदोलन है जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप या आपके आसपास कोई महिला SC या ST वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में अवश्य जानकारी दें।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड।

बेहद ही भावपूर्ण गीत है। यह गीत उन भावनाओं को बड़ी खूबसूरती से व्यक्त करता है जो इंसान किसी नए माहौल, नए शहर या नई दुनिया में खुद को अकेला और अजनबी महसूस करता है। गीत के बोल दिल को उस हल्की सी उदासी और अनकहे एहसासों को बहुत सहजता से सामने लाते हैं। शानदार धुन, भावपूर्ण शब्द और मधुर गायकी इस गीत को आज भी उतना ही असरदार बनाते हैं जितना अपने समय में था। यही वजह है कि यह गीत वर्षों बाद भी श्रोताओं के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जिंदगी भी हमें ऐसी राहों पर ले आती है जहां सब कुछ नया होता है, लेकिन समय के साथ वही अजनबी रास्ते अपने लगने लगते हैं। और यही संदेश यह गीत बड़ी खूबसूरती से देता है। तो दोस्तों, इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 5:43:15 और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स अपनी दोस्त ज्योति के साथ सिर्फ और सिर्फ 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर। तो दोस्तों, बातों और गीतों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगले गीत की ओर।

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर।

दोस्तों अभी आप एक गीत सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज़ में फिल्म गीत से, और इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। तो दोस्तों इस वक्त स्टूडियो में समय हो चला है 5:52:30, यानी कि घड़ी की सुई बोल रही है कि हम अपने पहले सेगमेंट की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि ठीक आप 6 बजे सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 में सुनेंगे न्यूज़ इन इंग्लिश और 6:10 में सुनेंगे विश्लेषण और फिर 6:20 में हम जुड़ चलेंगे इसी कार्यक्रम में यानी कि चाय एंड क्लासिक्स में। यानी कि बस थोड़ी ही देर के लिए अपनी दोस्त ज्योति को आपको देनी होगी इजाज़त। लेकिन दोस्तों बात और गीतों का सिलसिला यूं ही नहीं थमने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों अपनी दोस्त ज्योति को दीजिए बस थोड़ी देर के लिए इजाज़त और जाते जाते आप सभी के लिए एक मधुर तराना छोड़े जाती हूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता

0: व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मानसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम में हम भारत के सहकारी क्षेत्र में आ रहे परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे। श्रोताओं, देश में सहकारिता मंत्रालय की

स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन आयोजनों का समापन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के साथ होगा। इन कार्यक्रमों में सहकारिता क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए प्रमुख सुधारों, गतिविधियों और भविष्य की दिशा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में हम

0: घर बने और विकास की धारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज की इस सोच का सबसे मजबूत आधार सहकारिता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, संसाधनों को साझा करते हैं और एक दूसरे की ताकत बनते हैं, तभी सामूहिक समृद्धि का रास्ता खुलता है। आज भी सहकारिता की यही भावना भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण सामर्थ्य मानी जाती है। पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार और नई पहल की गई। आइए समझते हैं कि सहकार से समृद्धि के इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए।
1: सहकारिता आंदोलन भारत में नया नहीं है। देश में इसकी शुरुआत एक सदी से भी पहले हुई थी और आज लाखों सहकारी समितियां कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, बैंकिंग और ग्रामीण विकास जैसे कई क्षेत्रों में काम कर रही हैं। लेकिन लंबे समय तक इस पूरे क्षेत्र के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं था। इसी आवश्यकता को देखते हुए 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देश के सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को जमीन पर उतारना। केंद्र सरकार की वर्ष 2025 की उपलब्धियों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 114 प्रमुख पहल शुरू की गई हैं। इनका उद्देश्य सहकारी समितियों को केवल ऋण देने वाली संस्थाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बहुउद्देशीय केंद्र बनाना है। इसी सोच के अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के मॉडल उपनियमों में बदलाव किया गया ताकि वे कृषि के साथ साथ डेयरी, मत्स्य पालन, भंडारण और अन्य गतिविधियों में भी काम कर सकें। सरकार के अनुसार अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इन नए उपनियमों को अपनाया है। सहकारिता क्षेत्र को नई पहचान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई नई संस्थाओं का भी गठन किया गया। इनमें नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के माध्यम से सहकारी उत्पादों को विदेशी बाजारों तक पहुंचाने, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के जरिए गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने और नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल शामिल है। सहकारिता को नए क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में सरकार ने भारत टैक्सी जैसी पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करना है जहां टैक्सी और बाइक चालक स्वयं सहकारी संस्था के सदस्य हों। इससे उन्हें कम कमीशन देना पड़े और उनकी आय का बड़ा हिस्सा सीधे उनके पास तक पहुंचे।
0: श्रोताओं, सहकार से समृद्धि की सोच अब केवल कृषि या सहकारी बैंकों तक सीमित नहीं है। इसका दायरा तकनीक, डिजिटल सेवाओं, निर्यात, जैविक खेती और नए रोजगार के अवसरों तक बढ़ाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार ने सहकारिता क्षेत्र के विशेषज्ञ उदय भान सिंह जी, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट गांधीनगर के पूर्व निदेशक डॉक्टर AK अस्थाना से इन्हीं विषयों पर विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: इंडियन कोऑपरेटिव मूवमेंट इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड।
3: भारत में सहकारिता आंदोलन का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक पुराना है। दुनिया की कुल सहकारी समितियों में से लगभग 25% भारत में है। आज देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जिनसे करीब 30 करोड़ सदस्य जुड़े हुए हैं। सहकारिता देश में लगभग 30 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है और इसका सीधा संबंध ग्रामीण अर्थव्यवस्था से है। इसलिए सहकारिता केवल एक संगठन या व्यवस्था भर नहीं है, बल्कि ये भारत की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक जीवंत हिस्सा है। सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के लिए एक अलग सहकारिता मंत्रालय की आवश्यकता महसूस की गई। इसी सोच के तहत जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ, तब प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया और आज यही मंत्र देश की सहकारिता नीति का मूलाधार बन गया है।
2: सहकार से समृद्धि।
0: श्रोताओं, किसी भी व्यवस्था को समय के साथ प्रभावी बनाए रखने के लिए उसका आधुनिक होना आवश्यक है। आज जब देश तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, तब सहकारिता क्षेत्र भी इस परिवर्तन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ रही है, सेवाएं तेज हो रही हैं और गांवों तक नई सुविधाएं पहुंच रही हैं। यही डिजिटल बदलाव किस तरह ग्रामीण भारत को नई ताकत दे रहा है, सुनिए हमारी अगली रिपोर्ट।
1: पिछले कुछ वर्षों में सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण आजीविका को डिजिटल तकनीक से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल कामकाज को आसान बनाना नहीं, बल्कि पारदर्शिता बढ़ाना, महिलाओं और युवाओं को नए अवसर देना और गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना भी है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के कंप्यूटरीकरण का अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। हजारों PACS को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। इससे रिकॉर्ड रखना आसान हुआ है, सेवाएं तेज हुई हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, डिजिटल भुगतान तथा कई सरकारी सेवाओं की पहुंच भी बढ़ी है। अब इसी दिशा में ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लोक OS नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया गया है। ये मंच स्वयं सहायता समूहों और उनके संगठनों के

0: पॉडकास्ट को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की बचत, ऋण भुगतान, आजीविका और अन्य वित्तीय गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे कागजी काम कम होता है, लेन देन पर नजर रखना आसान होता है और पारदर्शिता बढ़ती है। हर वर्ष लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड भी इसी प्लेटफॉर्म पर दर्ज किया जाता है। लोक ओएस की पहुंच आज 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 762 जिलों, 7,241 विकास खंडों, 2,57,000 ग्राम पंचायतों और 5,92,000 गांवों तक हो चुकी है। इस प्लेटफॉर्म से 94,00,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह और लगभग 10 करोड़ सदस्य जुड़े हैं। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए हाल ही में शी लिप्स नाम का एक डिजिटल मंच भी शुरू किया गया। ये महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने, उसे आगे बढ़ाने और उसकी प्रगति पर नजर रखने में मदद करेगा। कृषि और गैर कृषि दोनों तरह के ग्रामीण उद्यमों को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसी डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से लखपति दीदी अभियान को भी मजबूती मिल रही है। इस प्लेटफॉर्म पर 3,87,00,000 संभावित लखपति दीदियों की प्रगति की डिजिटल निगरानी की जा रही है। इससे योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और उनकी प्रगति पर लगातार नजर रखने में सहायता मिल रही है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सहकारिता के इन प्रयासों का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। विशेष रूप से महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारी संस्थाएं लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर ये बदलाव किस तरह दिखाई दे रहा है और सहकारिता कैसे लोगों के जीवन को बदल रही है, आइए इस विषय पर सुनते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट मदुरई के डॉक्टर ए मईल मुरुगन को।
2: पहले अधिकांश सहकारी संस्थाएं क्षेत्रों में तो थीं, लेकिन गांव के लोगों को अपनी कई आवश्यक सेवाओं के लिए शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। अब सहकारिता के माध्यम से अनेक बुनियादी सुविधाएं गांवों तक पहुंच रही हैं। आज महिलाएं और युवा सहकारिता से मिलने वाले विभिन्न लाभों के प्रति अधिक जागरूक हैं। सहकारी मेडिकल स्टोर से लेकर गोल्ड लोन जैसी सुविधाएं भी अब उनके लिए आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को हमारी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS के माध्यम से ऋण मिल रहा है। इसके साथ ही वे किसी भी समय, चाहे एक रुपया हो या उससे अधिक राशि, आसानी से जमा या हस्तांतरित कर सकती हैं। इन सुविधाओं से ग्रामीण लोगों, विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और उन्हें सहकारिता का प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। जब महिलाएं और युवा सहकारिता की अवधारणा और उसके लाभों को समझते हैं तो वे अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि हम कहते हैं सहकारिता एक बेहतर दुनिया के निर्माण का आधार है।
3: कोऑपरेटिव्स बिल्ड्स ए बेटर वर्ल्ड।
1: पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में किए गए सुधारों ने पारदर्शिता, तकनीक और जन भागीदारी को नई दिशा दी है। सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाकर किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण उद्यमियों तक नए अवसर पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं। महात्मा गांधी का विश्वास था कि भारत की समृद्धि का रास्ता उसके गांवों से होकर जाता है। उनका ग्राम स्वराज का विचार आत्मनिर्भर, सहभागी और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करता था। आज सहकार से समृद्धि का मंत्र उसी सोच को नए समय की जरूरतों के अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग मोहित सिंह।

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स।
1: तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में, और मैं हूँ आप सभी की दोस्त एंड होस्ट ज्योति, लेकर इस कार्यक्रम को सिर्फ और सिर्फ 100.1 FM गोल्ड, खरा सोना पर। तो दोस्तों, बातों और गीतों का ये सिलसिला चलने वाला है, जी हाँ, ठीक 6:30 तक। तो चलिए दोस्तों, अगले गीत की ओर रुख करते हैं।

बिल्कुल दोस्तों, हमारा जो प्यार है एक दूसरे के प्रति, हमारे कार्यक्रम के प्रति, हमारे गीतों के प्रति, ये सदैव ऐसे ही अमर रहेगा। तो दोस्तों, चाय की प्याली की गर्माहट और सदाबहार गीतों की मिठास से सजी चाय एंड क्लासिक्स की आज की ये महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंची है। उम्मीद है कि आज के गीतों ने आपको बीते सुनहरे दौर की उन यादों से एक बार फिर रूबरू कराया होगा, जहां संगीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि सीधे दिल तक पहुंचता है। इन सदाबहार नगमों की खासियत यही है दोस्तों कि ये समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन इसकी मिठास और एहसास कभी पुराने नहीं पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों संगीत हमारी जिंदगी का वो साथी है जो हर भावना में हमारे साथ चलता है, खुशी में मुस्कान बनकर, उदासी में सहारा बनकर और यादों में एक खूबसूरत हमसफर बनकर। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में संगीत के लिए हमेशा थोड़ी सी जगह जरूर बनाए रखिए। और दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी कभी ऐसे ही अगले अंक में कुछ और सदाबहार गीतों, दिल को छू लेने वाली बातों और यादों की सुरीली महफिल के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए और संगीत की इस खूबसूरत दुनिया से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति, अब आप सभी से विदा लेती हूँ, लेकिन ठीक 7:02 मिलने आऊंगी। जी हाँ, कार्यक्रम छायालोक में यानी 107 FM रेनबो पर। और जाते जाते आप सभी के लिए किशोर कुमार, आशा भोसले, मुकेश की आवाज़ में ये तराना छोड़े जाती हूँ।

0: Myself, सरबजीत कौर।
1: धन्यवाद सरबजीत, और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले स्टडी कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता। आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
2: जी, बहुत धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर।
0: ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड एफपीआईज रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीस अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स।
1: ओपेक प्लस ने अगस्त से कच्चे तेल के दैनिक उत्पादन में 1,88,000 बैरल्स की वृद्धि करने की घोषणा की। सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में साप्ताहिक बढ़त और एफपीआईज ने जून में रुख पलटा। भारतीय पूंजी बाजार में 4,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश।
0: And before we go just any further in the program, may we once again remind our dear listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. And Subodh, let's look at the first big story of the day. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after a meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. They also reaffirmed their commitment to a cautious and flexible approach with the option to increase, pause or reverse production adjustments depending on market conditions. The oil producing group said it will continue to monitor the global oil market and ensure compliance with agreed production targets. The next meeting of the participating countries is scheduled for the 2nd of August.
1: हम एक बार फिर से श्रोताओं को याद दिला दें कि आज हम म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करेंगे। हम रविवार के हर रविवार की तरह जैसे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं, और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष गुप्ता। और अगर श्रोताओं के पास कोई सवाल हैं तो आप 2331-4444, 2371-0481 और 2371-7106 पर फ़ोन कर सकते हैं अपने सवाल पूछने के लिए म्यूचुअल फंड्स पर। और अगली खबर पर चलते हैं सरबजीत। हम पीएनजी पर जो कुछ पाबंदियां लगाई थी सरकार ने अभी पिछले दिनों, जो संकट था पश्चिम एशिया का उसको देखते हुए, वो हटा ली गई हैं। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से फिर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जल डमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। आशुतोष, अभी दो खबरें जो एक कवि सरबजीत ने पढ़ी हैं और दूसरी ये है, वो ओपेक प्लस ने कहा है कि हम अब रोज़ उत्पादन बढ़ा रहे हैं डेली का अपना, और पीएनजी पर जो हमारे यहाँ पाबंदियाँ लगी थी वो भी हटा ली गई हैं। अब कुल मिलाकर लग रहा है कि जिस तरह का संकट, जिस तरह के संकट के बादल छा रहे थे, वो

0: हद तक छट गए हैं, थोड़ा आश्वस्त महसूस कर रहे हैं, क्या बाजार भी लगेगा आश्वस्त जो हम महसूस कर रहे हैं बाजार पर भी दिखाई देगा?
1: जी बिल्कुल, जो पिछले एक दो हफ्ते की डेवलपमेंट्स हैं वो एक राहत का माहौल है, और वो ही देखा गया है कि किस तरह इक्विटी मार्केट्स ने भी रिएक्ट किया है इस इन इन न्यूज़ को लेके। अच्छा खासा एक जंप एक शॉर्ट पीरियड में इस दौरान मार्केट्स में देखा गया है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक मेरे ख्याल एक सीख छुपी है सारे इन्वेस्टर्स के लिए कि मैं काफ़ी सारे ऐसे निवेशकों को जानता हूँ जिन्होंने ये लगभग तय कर लिया था कि ये तो लड़ाई लंबी चलने वाली है और मार्केट्स में तनाव का माहौल बना रहेगा, मार्केट्स और नीचे जाएंगी, और काफ़ी पैसा उन्होंने मार्केट से विड्रॉ किया, और उसके बाद अचानक मार्केट में ये पलटफेर आया पिछले एक डेढ़ हफ्ते में, और जो एक 4-5% का गेन एक जो काफ़ी लंप में मार्केट में देखा गया है, तो उन्होंने लॉस में पार्टिसिपेट किया, गेन से वो वंचित रह गए, तो उनके पोर्टफोलियोज में ये बढ़त नहीं दिखती है जो कि मार्केट में दिख रही है। तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि ये माहौल ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, तो कुछ कुछ न्यूज़ आती रहेगी, हो सकता है संधि होगी, यूएस ईरान के बीच में संधि ना हो पाए, आपको अपने गोल्स अपने सर्कमस्टांसेस पर फोकस करके निवेश का निर्णय लेने हैं, ना कि यूएस ईरान में क्या चल रहा है उस पर, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मार्केट्स में थोड़ी राहत का माहौल है, उससे प्रोत्साहन प्राप्त करें।
2: All right. So as you know, Subodh, you know, he raised hopes. He said that the clouds are looking just better now, little bright and blue. And you spoke about categories of funds. So all said and done, let's just revise our basics of investing in mutual funds. When it comes to choosing the category of fund, how important is the criteria of investment goals, risk appetite? What do you have to say to our listeners on this?
1: Very important. In fact, more important than choosing the right fund, people often spend a lot of time thinking about picking the best mutual fund, but even before that there is no definition of a best mutual fund. Nobody knows which is going to be the best. Often people mistake best mutual fund with the top performing mutual fund. They want to be in the fund which will give best returns in the next 1 year.
2: Correct.
1: And that is a wrong pursuit in my opinion. The definition of best fund starts from what is the most suitable investment fund for you. And as you rightly said, that one has to focus on one's risk appetite, one's investment objectives, one's time horizon, and accordingly pick the right one. If you have at least 5-7 years or more of investment horizon, you can look at flexicap funds, value-oriented funds, all the mainstream diversified equity funds, they can be suitable. If you have 3-5 years of investment horizon, look at hybrid funds. You have funds like balance advantage funds, which optimize, which give you a fair mix of equity and debt, and those could be your choice. Anything below 3 years, you have to have you have to play caution. You don't have to maximize returns and focus more on debt oriented investment products. So broadly, that is the main thumb rule that should guide anybody's asset allocation.
2: We'll come back to you on that, Ashutosh. Meanwhile, let's connect with our first caller from Jaipur. जितेंद्र जी स्वागत है, सवाल पूछे।
3: हाँ सर, ये जैसे काफी दिन से मार्केट डाउन हुआ, अभी थोड़ा सा उठा है, तो हम आपसे एक दो प्रश्न है। एक तो कौन सा सेक्टर सस्ता है सेक्टोरियल फंड में, ठीक है, कौन सा सेक्टर सस्ता? आईटी तो है ही है, तो और एक दूसरा कौन सा है? और दूसरा सर की वो एक क्लीन एनर्जी फंड आया था मोतीलाल ओसवाल में, क्लीन एनर्जी, तो किस टाइप का फंड है उसको, मतलब उसमें कौन सा ये किस टाइप का स्टॉक रहेगा क्लीन एनर्जी?
1: देखिए, पहला आपने बोला कि कौन से सेक्टर में, मेरे लिहाज में आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आप ये यही एक निर्णय है जो कि आप एक एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो आप इस बात की इतनी बहुत चिंता ना करें कि कौन सा सेक्टर सस्ता है। आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करिए। एक अगर आपका अच्छा डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है तो ये निर्णय फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए, उनका दैट इज़ देयर डे जॉब, वो यही उनका काम है। तो आप अगर सेक्टर्स का चुनाव करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो फंड मैनेजर का काम है, आधा काम फंड मैनेजर का आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, तो उससे बचिए। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स जिन्होंने मार्केट के उतार चढ़ाव के अलग अलग टाइम पीरियड्स में अच्छे रिटर्न देने का जिनका अनुभव है, जिनका

0: ट्रैक रिकॉर्ड है, उस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करिए और बाकी डिसीजंस आप फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लीन एनर्जी देखिए, आजकल काफ़ी जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये माना जा रहा है कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर, विंड, इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके लिए माना जाता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है। तो ये जितने भी क्लीन एनर्जी थीम पे निर्धारित इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इस टाइप के एवेन्यूज में देखते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं जो कि सोलर, विंड, रिन्यूएबल, इस टाइप के एनर्जी सोर्सेज से बेनिफिट प्राप्त कर सकती हैं और वो उनमें निवेश करते हैं।
1: जी आशुतोष, आपने अभी जैसा बताया कि सेक्टर्स पर गौर ना करें आप ज़्यादा, ये आप फंड मैनेजर पर छोड़ दें, लेकिन हर छोटे बड़े हर निवेशक के मन में ये सवाल रहता है कि भाई जब म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो सेक्टोरल फंड्स बना रही हैं तो नेचुरली जिज्ञासा रहती है लोगों की, अच्छा हम इसको भी एक्सप्लोर करके देखते हैं भाई, तो आखिर ऐसे फंड्स हैं तो लोग उन पर जाएंगे भी, किनको बचना चाहिए और किनको उन पे जाना चाहिए, लेकिन इस पर चलिए हम आगे बात करेंगे। अभी सोनीपत से दीपक दहिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार
2: सर, मुझे इसके बारे में पूछना है, सेबी का कोई नया फंड आया था SIF करके, और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरोधा का एक लाइफ साइकिल फंड आया 2041, दोनों के बारे में बता दीजिए सर, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे क्या होगा, ये क्या प्लान है इनका।
0: जी SIF जो आपने कहा ये एक नए टाइप के फंड्स हैं, आप ये मानिए कि ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस PMS और म्यूचुअल फंड के बीच में है। 10 लाख का इनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है और ये कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स नहीं यूज़ करते हैं। ये फ्यूचर्स में ज़्यादा एक्सपोजर्स ले सकते हैं, शॉर्ट पोर्टफोलियो शॉर्ट पोजिशंस भी ले सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजीज ये लोग यूज़ कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड्स के लिए निषेध हैं बाय रेगुलेशन। हाई मिनिमम टिकट साइज इनका काफ़ी हाई है, इनको माना जाता है कि उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो इस टाइप के थोड़े ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उनके रिस्क को समझते हैं और उस रिस्क के लिए उनमें एपिटाइट है। तो SIF को कुल मिलाकर मैं कहूँगा बहुत नए प्रोडक्ट हैं, इनको थोड़ा समय दीजिए, कुछ ये नोवेल्टी अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने में सक्षम है कि नहीं है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर क्या ये कुछ ऐसी आपकी निवेश की ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है जो कि एक साधारण लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड से पूरी नहीं होती है, ये अभी ओपन क्वेश्चंस हैं, इनका कोई बहुत डेफिनेटिव आंसर नहीं है। इन फंड्स को थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करने दीजिए, इनमें निवेश करने की जल्दी में ना रहें, कुछ ऐसा आपका नुकसान नहीं हो रहा है, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है जो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो बिल्कुल कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसे फोमो कहते हैं उसमें पढ़कर इनमें इन्वेस्ट ना करें, इनको अपने आप को प्रूफ करने दीजिए उसके बाद निर्णय लीजिए। दूसरा आपने पूछा लाइफ साइकिल फंड, जी ये भी एक नए प्रकार के फंड्स हैं। जीरोधा ने पहला फंड अभी लॉन्च किया है, NFO पीरियड शेयर उसका अभी ऑन है। ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि अगर आपका मानिए 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो शुरू में ज़्यादा इक्विटी में एलोकेट करेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे टारगेट डेट पास आती जाएगी, जैसे जैसे निवेश के इनके इन फंड्स की अवधि समाप्त होती जाएगी, वैसे वैसे ये इक्विटी से थोड़ा सेफ डेट में ऑटोमेटिकली आपका पैसा मूव करते जाएंगे। तो ये काफ़ी हैंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि जिसमें आपको एसेट रीबैलेंसिंग अपने पोर्टफोलियो की नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली वो फंड हाई रिस्क से थोड़ा मॉडरेट रिस्क एंड लो रिस्क की तरफ बढ़ता चलेगा जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड कम होता जाएगा। अगेन मैं यही कहूँगा कि नए टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, अभी तो पहला प्रोडक्ट आया है, ये किस तरह निवेश करते हैं, क्या ये आपको अच्छा एक्सपोजर और ओवरऑल टाइम पीरियड में अच्छे रिटर्न देने में सक्षम हो पाते हैं कि नहीं, इनका खर्चा कैसा होता है। हाइब्रिड्स में देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनमें कुछ कॉम्पोनेंट डेट होता है, कुछ इक्विटी होता है, एक मिश्रित ये प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन काफ़ी तौर पर देखा गया है कि इनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा इक्विटी के नज़दीक होता है, इक्विटी के बराबर होता है, तो उस सेंस में ये थोड़ी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन बन सकते हैं। हाँ, टैक्स में ज़रूर ये टैक्स बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि रीबैलेंसिंग आपके लिए टैक्स फ्री हो जाती है, फंड करता है, आपको नहीं करनी होती, तो कुछ इनके एडवांटेजेस हैं, कुछ शायद इनके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, समय दीजिए इनको अपने आप को प्रूव करने दीजिए।
3: ऑलराइट, लेट्स आस्क आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, केशव जी अपना सवाल पूछें। जी
4: सर, ये हमारा प्राइवेट और गवर्नमेंट ट्रस्ट है, ये सब्जी से तो वहाँ हमारे को एक सजेशन देते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं एजेंट के द्वारा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी है कि जो एजेंट हमसे जो फंड बताएगा वो किस ढंग के तरीके से हम समझे कि ये सही हमें रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि हमारी एफडी है और एफडी 2 महीने बाद मैच्योर हो जाएगी, तो सही सिचुएशन क्या है कि आपको ये एफडी के बराबर कोई म्यूचुअल फंड है?
0: जी जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ आपका शायद कुछ एफडी में निवेश है जो आप म्यूचुअल फंड में करना चाह रहे हो, और आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपको सलाह दे रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड में जाने की, वो कैसे आप पता करें कि वो सलाह सही है कि नहीं। तो देखिए, दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपको यूलिप से बचना है। काफ़ी बार ये देखा गया है कि जब आप कोई किसी बैंक के थ्रू, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू निवेश करने जाते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड बताकर यूलिप बेच दी जाती है। पहला ध्यान आपको ये रखना है कि आपको यूलिप ना बेची जाए। अगर किसी भी निवेश प्रोडक्ट में आपको ये बताया जाता है कि उसमें कुछ इंश्योरेंस भी आपको साथ में मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि एक निवेश के साथ अगर इंश्योरेंस मिश्रित है तो एक यूलिप प्रोडक्ट है, आप उनसे बचें। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप नए इन्वेस्टर हैं, मेरी राय में किसी भी नए इन्वेस्टर को आप सारा अपना पैसा जितना भी आपका एफडी में है उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में ना लगाएं। आप एक छोटी रकम म्यूचुअल फंड्स में, आप मात्र 500 रुपये, 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप एक बहुत छोटी रकम म्यूचुअल फंड में लगाएं, 2-3 महीने उसमें निवेशित रहें, फिर उसको रिडीम करिए, पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आप ये फुल साइकिल करके देखिए, आपको फर्स्ट हैंड थोड़ी जानकारी प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। उसके बाद थोड़े बड़ी मात्रा में, थोड़े बड़े अमाउंट का निवेश प्लान करें। और शुरुआती निवेशकों के लिए अगर आपके पास लंबा टाइम होराइजन है तो मेरा ख्याल एक निफ्टी 50 बेस्ड इंडेक्स फंड आपके लिए अच्छा विकल्प रहेगा। उसमें सारे ही फंड लगभग एक जैसे होते हैं, फंड का चुनाव करना बहुत आसान होता है। किसी भी निफ्टी 50 फंड में एक छोटी रकम से शुरुआत करिए, उसमें कुछ 2-4 महीने बने रहिए, उसको देखिए, उसको ट्रैक करिए और उसमें से पैसा रिडीम भी करिए। जब आप ये फुल साइकिल कर लेंगे अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा बड़ा निवेश करने के लिए।
1: जी, और हम लौटे अपने सवाल पर कि सेक्टर्स हैं तो क्यों ना हम उनको भी एक्सप्लोर करें।
0: जी, तो देखिए मेरी राय में आम तौर पर ज़्यादातर निवेशकों को सेक्टर फंड से बचना चाहिए, क्योंकि आप जो भी सेक्टर लेंगे आपको पहले ये देखना होगा कि क्या वो सेक्टर का आपका अपना एक्सपोजर उस सेक्टर में आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से कितना है। अब जैसे बैंकिंग फंड की आप बात करते हैं तो बैंकिंग फंड के बहुत सारे सेक्टर फंड्स आपको मिल जाएंगे, इंडेक्स फंड्स भी बैंकिंग के आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना आम तौर पर किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो देखेंगे तो 25-30% या उससे भी ज़्यादा मात्रा में उनका पैसा बैंकिंग स्टॉक्स में ऑलरेडी लगा होता है। तो अगर आप ये नॉलेज के साथ किसी सेक्टर फंड का चुनाव नहीं करेंगे तो आप बहुत ओवर एक्सपोजर शायद ले लेंगे किसी भी सेक्टर में। तो पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड्स बनाए ही निवेशकों के लिए एक बहुत ही आसान, सुगम, हैंड्स फ्री एक्सपोजर के लिए गए थे। अगर आपको फिर भी किसी सेक्टर पे कोई खास कन्विक्शन है, कुछ खास जानकारी है जिसके बलबूते पर आप उस सेक्टर में थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर लेना ही चाहते हैं तो 5-7%, 10%, उससे ज़्यादा मेरे राय में आपको सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए।
1: जी,
3: let's hear what our next caller wants to ask. Mr. Ramakant, please pose your question. Ramakant ji, sawal poochhe.
5: Ji, namaskar, main Kolkata se Ramakant Singh bol raha hu.
3: Ji,
5: maine last 5-6 mahine mein thoda investment shuru kiya hai MF mein. Ye humko kitne din tak chalana chahiye aur ise related isse kya benefit mil sakta hai, thoda kuch jankari dein please.
0: जी, तो पहला सवाल कितने दिन तक। देखिए, म्यूचुअल फंड्स की कोई निश्चित अवधि के प्रोडक्ट्स नहीं है, आप जब तक इसमें निवेशित रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं, आपके पास फुल लिक्विडिटी होती है, आप जब भी पैसा निकालना चाहें आप निकाल भी सकते हैं। तो ये एफडी की तरह कोई फिक्स्ड टेन्योर वाले फंड्स नहीं होते हैं, आपकी मर्जी है, ये आप पे निर्धारित करता है कि आपको कब पैसे की ज़रूरत है, आप तब इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका लंबे समय का निवेश है, आपने इक्विटी में एक वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने पैसे की बढ़ोतरी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है, तो इसमें बने रहिए। कम से कम इक्विटी फंड्स के निवेश को 5-7 साल आपको कम से कम देने होते हैं, जिससे कि उसका कुछ बेनिफिट आपको प्राप्त हो पाए। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक पेड़ लगाने की तरह है, जिसमें आपको कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, नहीं सालों में आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो आप इसमें बने रहिए और इसकी एनएवी जो आपको मिली होगी उसकी ग्रोथ होती है। आप अगर उसकी एनएवी ट्रैक कर रहे हैं तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनएवी बढ़ेगी वो आपका गेन है। तो जब आप बेचेंगे बढ़ी हुई एनएवी पे बेचेंगे तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका गेन है म्यूचुअल फंड से।
1: जी अगले कॉलर हैं भोपाल से, शंकर स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
6: नमस्ते सर।
1: नमस्कार।
6: मेरा अभी इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा मैंने शुरू किया है डेट फंड में, शॉर्ट टर्म डेट फंड में आईसीआईसीआई के, तो उनमें इतना अच्छा रिटर्न नहीं है, क्या आर्बिट्राज फंड कंसिडर किया जाए या डेट फंड के रिटर्न इतने कम क्यों हुए हैं रिसेंट टाइम्स? बिकॉज एफडी में तो वी हैव टू पे टैक्स और टीडीएस वगैरह एवरी ईयर, एंड डेट फंड में वी आर नॉट सपोज टू पे एनी टैक्स अंटिल अनलेस वी रिडीम। सर दूसरा सवाल है, इफ वी मर्ज टू फ्लेक्सी कैप स्कीम और सिमिलर इक्विटी स्कीम, तो क्या एक मर्ज मतलब एक से निकल के दूसरे में जाए तो क्या रिडेम्पशन माना जाएगा, या ऐसा कोई टूल अवेलेबल है जिसमें हमें टैक्स ना लगे, हम दो फंड को एक मर्ज कर दे एक ही फंड में, एक ही फंड है उसके, एंड इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिडेम्पशन और देयर इज नो सच स्कीम एंड वी हैव टू गो वाय रिडेम्पशन स्कीम? थैंक यू।
0: श्योर। पहला सवाल आपका शॉर्ट टर्म फंड को लेकर, देखिए हाल फिलहाल में जैसे ये ग्लोबल सिचुएशन जो रहा है, वॉर का सिचुएशन रहा है, तो यील्ड्स बॉन्ड मार्केट में बढ़ी हैं। जब भी यील्ड बढ़ती हैं तो बॉन्ड फंड्स के रिटर्न गिरते हैं, बॉन्ड्स के रिटर्न गिरते हैं और उसी लाइन पर बॉन्ड फंड्स के रिटर्न भी गिरते हैं। तो कुछ हाल फिलहाल के दो तीन महीने बॉन्ड फंड्स के लिए मुश्किल रहे हैं और वही उनके रिटर्न्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। फंड का चुनाव आपका अच्छा है, आप बने रह सकते हैं इस फंड में, और आपका एनीवेज शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि वो एफडी के आसपास या एफडी से शायद थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न दे पाए। तो उससे ज़्यादा रिटर्न अगर आप उम्मीद रखते हैं तो शायद आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। उतने रिटर्न देने में फंड सक्षम है, हाँ पिछले दो तीन महीने डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जैसे माहौल बदलेगा तो इनके रिटर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। आर्बिट्राज फंड्स आपने कहा, देखिए वही 5-6% रिटर्न की अगर आपकी अभिलाषा है तो आर्बिट्राज फंड्स आपको मेरा ख्याल निराश नहीं करेंगे। डेट फंड से थोड़े से ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन उनका बिगेस्ट एडवांटेज है टैक्स एडवांटेज। डेट फंड्स आपकी स्लैब रेट पर अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आपको उतना टैक्स देना पड़ जाता है, पोस्ट टैक्स रिटर्न काफ़ी कम हो जाता है। आर्बिट्राज फंड्स वहीं इक्विटी के तरह टैक्सेबल होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%, तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न आर्बिट्राज फंड्स का थोड़ा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल आप उस लिहाज से देख सकते हैं, लेकिन रिटर्न एक्सपेक्टेशन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप 6% के दायरे में आसपास अगर आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है आप तो आर्बिट्राज फंड्स को देख सकते हैं। इक्विटी से फिर आपने तीसरा सवाल पूछा, स्विच आप करना चाहते हैं दूसरे फंड में, तो देखिए टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। आप अगर सेम फंड हाउस के भी दूसरे फंड में आप मूव करते हैं, यहाँ आप सेम फंड के रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में मूव करते हैं तो भी उसे रिडम्पशन एंड बाय ट्रीट किया जाता है और उस पर टैक्स लगेगा। तो देखिए ऐसा कोई भी तिलिस्म नहीं है जिससे आप उससे बच पाएं। तो सोच समझ कर आपका इन्वेस्टर के लिए लेसन यही है कि आप सोच समझ कर अपने रिडम्पशंस प्लान करें, बहुत रेकलेसली एक फंड से दूसरे में जल्दी जल्दी चर्न ना करें।
3: और अमित जी जुड़ चुके हैं मुंबई से, सवाल पूछें।
7: थैंक यू सर। सर दो सवाल थे कि मल्टी एसेट फंड और मल्टी कैप फंड में क्या फर्क है और लिक्विड फंड और ओवरनाइट में क्या डिफरेंस हो, ये जानना था। मैं फोन पे आपका आंसर सुनता हूँ, थैंक यू
0: जी। योर फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टी कैप और मल्टी एसेट, फ़र्क ये है कि मल्टी एसेट फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी के फंड हैं, इनमें इनके मैंडेट में इन्हें कम से कम 3 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होता है। टिपिकली इन फंड्स में देखा गया है कि इक्विटी, डेट और गोल्ड या सिल्वर, और कुछ फंड्स थोड़ा सा रीट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ये सारी एसेट क्लासेस का कॉम्बिनेशन आपको मल्टी एसेट फंड्स में मिलता है। अब इस कैटेगरी के अलग अलग फंड्स काफ़ी अलग अलग तरीके से मैनेज होते हैं, तो ये बहुत कंपेरेबल एक दूसरे से शायद नहीं होते। कोई इक्विटी में बहुत ज़्यादा रखता है, कोई इक्विटी में बहुत कम रखता है, तो डिफरेंट फंड्स कैन हैव अ वेरी डिफरेंट एसेट एलोकेशन दैट दे फॉलो, बट द ब्रॉड प्रिमाइस इज एज पर द रेगुलेटरी मैंडेट दे हैव टू इन्वेस्ट एट एनी गिवन पॉइंट टाइम इन एटलीस्ट 3 एसेट क्लासेस, सो दैट इज मल्टी एसेट फॉर यू। मल्टी कैप फंड्स आर प्योर इक्विटी फंड्स विच इन्वेस्ट अक्रॉस लार्ज, मिड एंड स्मॉल, एंड ईच ऑफ दीज 3 मार्केट कैप सेगमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 25% ईच, सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन मल्टी कैप एंड मल्टी एसेट?
1: जी, अगले कॉलर है दिल्ली से राजीव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
8: मार्केट मंत्रा जी, जैसे मेरे को SIP करनी है, तो मैं PSU इक्विटी फंड मेरे लिए ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए कि स्मॉल कैप जिसमें अच्छा रिटर्न मिल सके?
0: देखिए, अगर आप शुरुआती निवेशक हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा दोनों से ही बचें, PSU और स्मॉल कैप। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, कोई फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड का चुनाव करें और उससे शुरुआत करें, क्योंकि बाकी दोनों काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हाई रिस्क हो सकते हैं। तो शुरुआती इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इन कैटेगरीज में से कोई एक या दो फंड्स का चुनाव करें और उसमें अपना SIP शुरू करें।
3: और BT पाठक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पुणे से, सवाल पूछें।
9: हाँ, गुड इवनिंग मैम।
3: गुड इवनिंग।
9: मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने बात की थी कि यूलिप में ना करे, यूलिप लिंक्ड जो इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी रहता है इन्वेस्टमेंट, और जो रेगुलर म्यूचुअल फंड, और यूलिप में बताया जाता है कि उसमें टैक्स फ्री इनकम रहता है और एडिशनल उसमें इंश्योरेंस भी रहता है, तो कौन सा बेनिफिशियल है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे या यूलिप लिंक्ड जो रहता है प्लान उसमें इन्वेस्ट करे?
0: देखिए, मेरी राय में जैसे मैंने पहले कहा था, आप यूलिप से बचें। यूलिप्स एक क्योंकि वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करते हैं, तो नेट रिजल्ट ये होता है कि ना आपको इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट एक एफिशिएंट तरीके से काम करती है। थोड़े डिस्ट्रीब्यूशन के कमीशन उनमें ज़्यादा होते हैं, शुरू के ही एक दो साल में काफ़ी कमीशन में आपका पैसा कट जाता है, तो कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए जितना पैसा बचता है, तो आपको शुरू में ही जो सेटबैक लगता है, योर रिटर्न्स आर ऑलवेज कैचिंग अप। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स के लिए यही रहती है कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें, अपनी इंश्योरेंस नीड के लिए एक सस्ता साधारण टर्म प्लान लें जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में समय शोर्ड लीजिए और कम प्रीमियम में, और बचा हुआ पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स या बाकी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में निवेश करें।
1: जी, और कीमती धातुओं के बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मई के बाद पहली बार साप्ताहिक बढ़त देखी गई। MCX में अगस्त अनुबंध के लिए सोने के वायदा भाव में हफ्ते के दौरान 2.2% की बढ़त हुई और ये 147,378 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सितंबर अनुबंध की चांदी वायदा 6.2% बढ़कर 237,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। और FPI का हाल ये रहा कि जुलाई के 3 शुरुआती कारोबारी सत्रों में लिवाली का रुख बनाए रखा FPIs ने, और इस महीने अब तक उन्होंने 708 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर खरीदे हैं। जून में उन्होंने भारतीय शेयर बाजार से 49,340 करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अब ये रुख उलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय ऋण बाजार में FPI ने पिछले महीने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी। जनरल लिमिट के तहत उन्होंने 30,620 करोड़ रुपए, FAR के जरिए 21,652 करोड़ रुपये और VRR के तहत 3,246 करोड़ रुपये का निवेश किया। और आशुतोष, आज वक्त इतना ही है सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद।
3: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडेज शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। ओपेक प्लस अनाउंसेस ऑयल आउटपुट हाइक ऑफ 1,88,000 बैरल्स पर डे फ्रॉम अगस्त। इन बुलियन मार्केट गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस लॉग वीकली गेन्स एंड FPIs रिवर्स ट्रेंड इन जून विद नेट इनफ्लो ऑफ ओवर 4,600 करोड़ रुपीज अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स। एंड दैट्स ऑल इन टुडेज एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा। सी यू टुमारो, अंटिल देन गुड बाय।
10: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू करने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2000

0: 26 में संशोधन किया गया है। इसी बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के उदयगिरी शक्ति और कवरत्ती युद्धपोत ने सिंगापुर के चांगी नौसैनिक अड्डे का दौरा पूरा कर लिया है। यह दौरा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह दौरा भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं के प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात डेढ़ बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Rasim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministers of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. Union Minister Jyotiraditya Scindia and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Scindia said this project will connect the district to industrial development, defence production and the vision of a self-reliant India. The world-renowned Panduwani exponent and Padma Vibhushan awardee Dr. Tejan Bai, who brought the folk culture of Chhattisgarh to global prominence, was accorded a state funeral at a native village, Ganiari, Indore district, this evening. On the occasion, public representatives, administrative officials, artists, literateurs and thousands of mourners paid their tearful respects to the legendary icon of folk art. Renowned Panduwani singer passed away early this morning. She was suffering from a prolonged illness and was undergoing treatment at AIIMS Raipur. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC Plus, has agreed to increase oil production by 188,000 barrels per day from August this year, following a virtual meeting to review global oil market conditions. In a statement released after its virtual meeting today, the seven OPEC Plus member countries comprising Saudi Arabia, Russia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria and Oman said the decision is aimed at supporting market stability. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. In Raigarh district, 10 to 12 tourists were safely rescued by the police from Adoshi waterfall near Khopoli after the water level suddenly rose. Authorities have advised people to stay away from rivers, waterfalls and other water bodies during the monsoon. In Mumbai, a 63-year-old man was killed after a tree fell on a shop in Kuria during heavy rain this afternoon. The BMC said 64 incidents of tree falls and 8 cases of wall or partial house collapses have been reported across the city. Heavy rain and strong gusty winds have also disrupted flight operations significantly. The India Meteorological Department has issued a red alert in the Konkan districts, including Mumbai, Thane, Palghar, Raigarh and Ratnagiri. In the rest of Maharashtra, the weather office has forecast thunderstorms with lightning, gusty winds of 30 to 40 kilometers per hour and extremely heavy rainfall at isolated locations. The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall in Gujarat for the next 7 days. Dang, Navsari, Valsad, Daman, Dadra and Nagar Haveli, Bhavnagar, Amreli, Gir Somnath and Diu are likely to receive extremely heavy rainfall tomorrow. Scientist in IMD Ahmedabad, Pradeep Sharma said a red alert has been issued for these districts. Fishermen have also been advised not to venture into the sea for the next 5 days. In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at Lord's Cricket Ground in London today. The match is scheduled to begin at 8 p.m. Indian Standard Time. In the FIFA World Cup, Brazil will take on Norway in the round of 16 match in New Jersey at 1:30 a.m. Indian Time tonight, while Mexico will face England at Mexico City in other pre-quarter final at 5:30 a.m. tomorrow. In the Wimbledon tennis, the round of 16 clash of men's singles between Novak Djokovic and Roman Sulifinin is currently underway, while top seed Yannick Sinner of Italy will take on Japan's Shintaro Mochizuki later today. And that is the end of this news bulletin.

0: উনি বাটিক নিয়ে যান এখান থেকে। এই উপলক্ষে 2026 থেকে 2027 আমরা সেলিব্রেট করব বিভিন্ন মাধ্যমে।
1: কোনো জাতি ও দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে সাহায্য করবে এমন সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই সাংবাদিকদের প্রধান শর্ত বলে রাজ্যপাল আর এন রবি মন্তব্য করেছেন। সাংবাদিকতায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য নারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, প্রাচীন ভারতে দেবর্ষী নারদ জনসংযোগের প্রথম পথের সূচনা করেছিলেন।
2: Truth is not something that you can say absolute. I mean, absolutely spiritual, when you're talking about truth is Sanatana Satya. That's not that. When you are reporting something, you are not talking about Sanatana Satya. You are reporting about certain development which might not have happened or which could have happened in a manner that is not being reported. The litmus test or acid test, I think, should be whether what I am reporting, is it in the interest of my nation or not.
1: রাজ্যের মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী নারদ মুনিকে বিশ্ব বার্তাবাহক হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, আগামী দিনের সাংবাদিকরা এরকমই নির্ভীক ও সত্যদৃষ্ট সংবাদ পরিবেশন করবেন বলে তিনি আশাবাদী। বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্র দক্ষিণবঙ্গের তরফে পাঁচজন সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় আঢ্য, ভজনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, রথীন্দ্রনাথ দত্ত এবং রঞ্জিত রায়কে জীবনকৃতি পুরস্কার এবং এছাড়া আকাশবাণীর সংবাদ পাঠক প্রবীর ভট্টাচার্য সহ আরও 12 জন সাংবাদিককে নারদ সম্মানে ভূষিত করা হয়। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এখন তা ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের কাছে অবস্থান করছে। আগামী 24 ঘণ্টায় এটি ওড়িশার বালাসোরের কাছাকাছি এলাকা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে এবং পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে উত্তর ওড়িশা ও উত্তর ছত্তিশগড়ের দিকে অগ্রসর হবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের বিজ্ঞানী ডক্টর সৌরীশ বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণীকে জানিয়েছেন।
3: আমাদের রাজ্যে কিছুটা প্রভাব থাকবে উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলো এবং পার্শ্ববর্তী পশ্চিমের কয়েকটা জেলা। দু এক জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর কয়েকটা জেলা যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হাওড়া এবং কিছুটা কলকাতাও, এই জেলাগুলো দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী 24 ঘণ্টায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। বৃষ্টিপাত ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে 6 তারিখ থেকে।
1: মৎস্যজীবীদের 7 তারিখ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। পুরুলিয়ার ঝালদা 1 নম্বর ব্লকের হেঁসাহাতু অঞ্চলের তানাশি গ্রামে আজ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাজ পড়ে মৃত্যু হল একজনের। বৃষ্টির সময় আজ বাজ পড়লে গুরুতর আহত হন মোহিত মাঝি নামে ওই ব্যক্তি। ঝালদা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মোহিতকে মৃত ঘোষণা করেন। দীপিকা মাঝি নামে জখম আরেকজন চিকিৎসাধীন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের উদ্যোগে পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় আজ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল অত্যাধুনিক ট্রাফিক মার্শাল পরিষেবা। একই সঙ্গে রাজ্যে আগত দেশি বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা ও সুবিধার কথা মাথায় রেখে চালু করা হয়েছে 24 ঘণ্টার ট্যুরিস্ট হেল্পলাইন নম্বর। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরেকবার। একমাত্র যোগ্যরাই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন বলে রাজ্য সরকার আবারও জানিয়েছে। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির 125তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য আগামীকাল রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
4: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মাই জয়া ভারতী। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी वक्तव्य में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच नवाचार मंत्र के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि देश भर के नवोन्मेषकों की अत्यधिक रुचि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि आधिकारिक नवाचार मंत्र पंजीकरण पोर्टल पर अब तक हजारों इच्छुक उद्यमियों और नवोन्मेषकों ने पंजीकरण कराया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन साझा करने की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच वर्तमान संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। UKMTO ने बताया कि जहाज के होदेइदा से 55 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अज्ञात सशस्त्र हमलावरों द्वारा हमले की सूचना दी है। मामले की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। और खेलों में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Qatar Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani in Doha today. Both the leaders reviewed various facets of bilateral cooperation, especially energy, trade, investments, connectivity, security and people-to-people ties. In a social media post, External Affairs Minister said the two leaders explored new opportunities for deepening the strategic partnership. Union Minister of Agriculture and Rural Development Shivraj Singh Chauhan today released the first installment of over 25,000 crore rupees to the states under Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of the scheme with rural development ministries of all states and union territories. He said the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days. Union Minister Jyotiraditya Sindhya and Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today laid the foundation stone of a defence manufacturing plant in Shivpuri. The plant will be built by the Adani Group with an investment of around 2,500 crore rupees. Speaking on the occasion, Union Minister Sindhya said, "This project will connect the district to industrial development, defence production and the vision of a self-reliant India." The world-renowned Pandwani exponent and Padma Vibhushan awardee Dr. Tijan Bhai, who brought the folk culture of Chhattisgarh to global prominence.

0: करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेट गरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेट गरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण थाने और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जल स्तर बढ़ जाने से फंसे 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
4: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल

0: बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक

0: जागरूकता सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। इस माह के रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक ऐसे शहर की कहानी जो न केवल लोहे को पिघलाकर राष्ट्र की रीढ़ बनाता है, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण और लोकगीतों की धुन पर मुस्कुराता है। इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर, जमशेदपुर की बहुरंगी पहचान। आलेख है शाहिद अनवर का और इसे प्रस्तुत किया है राजीव रंजन तिवारी ने।

जोहार हिंदुस्तान, आज आकाशवाणी के इस राष्ट्रीय क्षितिज पर हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे अनूठे सफर पर जहां पिघलते फौलाद की धमनियों में धड़कता है मिनी इंडिया। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास राष्ट्र के स्वाभिमान का पहला तकनीकी और औद्योगिक घोषणा पत्र है। हर शहर की अपनी एक कहानी होती है। कुछ शहर इतिहास में दर्ज होते हैं, कुछ भूगोल में और कुछ लोगों के दिलों में। ये कहानी है एक ऐसे शहर की जो कभी जंगल था, जो कभी काली माटी नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां स्वर्ण रेखा और खरकई नदियां मिलकर धरती को हरियाली का आशीर्वाद देती थी। फिर एक सपना आया, एक दूरदर्शी आँखों में पलता हुआ सपना, और उस सपने ने जंगलों के बीच बसाया एक ऐसा नगर जो आज उद्योग का प्रतीक है, खेलों की राजधानी है, संस्कृतियों का संगम है और आधुनिक भारत के आत्मविश्वास की पहचान है। ये है जमशेदपुर टाटा नगर, इस्पात, संस्कृति और सपनों का शहर। वर्ष 1960, भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन एक भारतीय उद्योगपति ने स्वतंत्र भारत का सपना देख लिया था। वो सपना था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। उस सपने का नाम था जमशेद जी नसरवान जी टाटा। उन्होंने कहा था, यदि भारत को मजबूत बनाना है तो उद्योग, शिक्षा और विज्ञान को साथ लेकर चलना होगा। और फिर काली माटी की धरती पर जन्म हुआ एक ऐसे नगर का जो केवल कारखानों का समूह नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक दृष्टि थी, एक भविष्य था। आज वही नगर विश्व में जमशेदपुर और टाटा नगर दोनों नामों से जाना जाता है। ये शहर केवल बसा नहीं है, इसे सपनों ने गढ़ा है।

0: दूर दृष्टि ने सवारा है और लाखों हाथों ने अपनी श्रम की ऊष्मा से जीवन दिया है। किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी ऊंचे इमारतें नहीं बनाती, बल्कि वो रिश्ता बनाता है जो शहर और उसके लोगों के बीच होता है। यही रिश्ता जमशेदपुर को दुनिया के दूसरे औद्योगिक नगरों से अलग बनाता है। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज डीबी सुंदर रामम बताते हैं कि जमशेदपुर केवल कंपनी टाउन नहीं है, ये सामाजिक उत्तरदायित्व, सुनियोजित नगरीय विकास और नागरिक साझेदारी का एक वैश्विक मॉडल है।
1: फाउंडर का जो सपना है उसको साकार करने में जितने भी जनरेशन से जितने भी चेयरमैन आए, जितने भी एमडीज आए हैं और जितने भी लोग हैं साथ में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज यूनियन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को

0: अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रूपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Southwest monsoon has intensified in large parts of the country, bringing widespread rain, thunderstorms, lightning and gusty winds. The India Meteorological Department has said conditions are favorable for its further advance into some parts of Gujarat, remaining parts of Haryana, Punjab and some parts of Rajasthan during the next 4 days. Heavy to very heavy rainfall is predicted over Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Uttarakhand during the day. While scattered rainfall is expected in Delhi, Uttar Pradesh, Punjab and Chandigarh during the next 2 to 3 days. In Maharashtra, heavy monsoon rains continued to affect several parts of the state today, triggering rescue operations and rain-related incidents. The weather office has forecast heavy to very heavy rainfall at many places, with extremely heavy rainfall likely at isolated locations over the next 24 hours.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
2: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस दौरान श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलों का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जल संबंधों की समीक्षा की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। कल हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत ने यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स के प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तनाव बढ़ गया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों पर जारी दमनकारी कार्रवाई के बीच हुई है। पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां जूनियर डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और अस्पताल की सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और

ज़हीन वो है जो बहाव के साथ बहता है, कश्ती आगे हो तो किस्मत भी साथ रहता है। छूट जाए जो एक बार उस लम्हे की लहर, तमाम उम्र वो शख्स फिर